मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार तिनने हो लगर अब सेती देखने विचार रंग हसै रंग।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जिह रूप रंग अर रेख पीख को कह न सकत केह अचल मूरत अनपाओ प्रकाश अमितो जे कह जै कोट इंद्र इंद्राण साहि साहाण गणिज त्रिपावन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत गुण गावह पायाल भगत नागाद पुयंगम महादेव गुण रवै सदा जोगी जात जंगम गुण गावै मोन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचार्य ब्रह्मा गुण उचरै जिन हुकम सब सृष्ट सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो जप काल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा त्रिपत अगावै हर दर्शन मन मोरा भगत पंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल चरण कमल स्यो लागो मान सत गुर तूठे कीनो दान नानक कौ गुर दिखिया दीन प्रभ अविनाशी काट काट चीन श्री गुर दर्श त्यान श्री गुर शब्द ज्ञान शस्त्र स्नाह पंच दूत बस आए है श्री गुर चरण रीन श्री गुर सरन तीन करम परम कट अपै पद पाए है श्री गुर शब्द लेख
श्री गौर सेवक पेख अशाल अलेख प्राब अलाख लखाए हैं। गौर मोख साध संग गोष्ट प्रेम प्रसंग निम्रता निरंतरी कै सहज समाये है। सो कहौ टल गुर सेवियै

जिस पास बैठिया सोही है सब नादा वेसाहु, सज्जन सच्चा पातशाहु, सिर साहांद साहु। जिस पास बैठिया सोही है सब नादा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला पहला, तू प्रभ दाता दान माते पूरा,

मैं क्या मांगा किस थिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। काट काट राव रहया बनवारी, जाल थाल महियाले गुप्तो वरतै,

मरत पयाल आकाश दिखायो, गोर सत गुर कृपा तारी जियो। सो ब्रह्म अजोनी है भी होनी, घट भीतर देख मुरारी जियो।

मशक्कत काल नानक ते मुख उज्जले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

गए मसकत का नानक ते मुख कीती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

ऐसो राज छोड़े और दूजा कौन त्याई है। छत्रधारी छत्री पत्ता छत्रधारी छत्री पत्ता छैल रूप छितना छोड़ कर।

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगम अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी, हर सच्चे सृजनहार। सब जी तुम्हारे जी, तू जियां का दातार। हर त्याव हो संत हो जी, सब दुख विसारन हार। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचार। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समान। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे जोज बिडाना।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह। पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपई। हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपार। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हाथ द मोहे बचाव हो। सुखी वसै मोरो परिवार, सेवक सिख सवै करतार। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दे मुझे उवरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लिहो मोह राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचरी असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपार। जब आ करख करत हो कब हों, तुम मैं मिलत देह धर सब हों। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह विद सजा प्रथम संसार। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो शंकर अकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाई अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सुजंपव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दोस्त जीते उठ वाती उत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हुवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक वार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काल।
कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उवार।

स्वैयन पाए गहे जबते तुमरे तबते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो श्री असपान।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईयां शब्दों तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया।

ज्यों जन हो त्यों राख, हर प्रव तिरिया किते गनो असंख, अवगण मिरिया असंख अवगण खते फिरे, नित परत सद भूलिए, मोह मगन बिकराल माया, तो परसादी भूलिए, लोक करत विकार बिखड़े, प्रव नेर हों ते नेरिया, बिनवंत नानक दया तारुहो, काड पव जल फिरिया, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुर नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्वास ना परियारे, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारे, दर्शन प्यासी दिन सुरात,

तेस की संगत जे मिले प्यारे, रस ले तत विलोए। पत परवाना साच का प्यारे, नाम सच्चा निशान। आया लिख ले जावना प्यारे, हुक्मी हुक्म पछाण।

हम अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविया, एहन सहज

गुरु रामदास राखो शरणाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई, एक ओंकार सत्य।

मुसलमाना सिफ सरियत पढ़ पढ़ कर विचार बंदे से जे पवे बिच बंदी वेखण को दीदार हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूप अपार तीर्थ नाम अर्चा पूजा अग्रवास बैकार जोगी सुन त्यावन जेते लख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया कायाकार सतिया मन संतोख।

0: गुण गावे मन ब्यास, जिन वेद व्याकरण विचार है, ब्रह्मा गुण उच्चरै जिन कुम सब सिट सवारे, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझान्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन वाण्यो, ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण समझान्यो, जप कल सुजस नानक गुर सहज जोग जिन माण्यो।
1: गुण गावे नवनाथ तन गुर साज सुमायो, माँ ताता गुण रवे जेन चक्कर वे कहायो, गुण गावे बलरा सपत पताल बसंत, पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंत, दूर बाबरू रंगरे गुरु नानक जस गायो, कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो, कब कल सुजस नानक गुर कट कट सहज समायो।
2: आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे, सर्व रहयो परपूर सगल काट।

जाको मुन ध्यान तारे फेरत सकल जोग, कब बहु को पावे आत्म परगास को। वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको, सेव मुन गहे ना तो जात का बलास को। जाको जोगी जाति सिद्ध साधक अनेक ताप, जटा जूठ पेख किए फिर तो उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी,

देह ना गेह ना नेह ना नीता, माया मत कहा लो गारो, शतर ना पतर ना चौर ना चावर, बहती जात हृदय ना बिचारो, रथ ना असव ना गज सिंघासन, छिन मह त्यागत नांग सिधारो, सूर ना बीर ना मीर ना खानम, संग ना को दृष्ट निहारो, कोट ना ओट ना कोस ना छोटा, करत बिकार दऊ कर चारो, मित्र ना पुत्र कलतर साजन सख, उल्टत जात बिरक्की शारो, दीन दयाल पुरख प्रभ पूरण, छिन छिन सिमरो अगम पारो, श्रीपत

0: कीरत कहै त्राहे त्राहे तो पासरने।
1: जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो।

दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख हुए सिफत खसामदी नूर अरसहं कुरसहं।

हमरी गण तुन गणिया काई, अपना बिरद पछान। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। साचा साहेब सद मेहरवान, बंद पाया मेरा सतगुर पूरा, होई सर्ब कल्याण। रहाओ जियो पाई पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखी, नानक साध कुर्बान। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखी, नानक साध कुर्बान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा, हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण। हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग माण।

0: अपराधी दुनानी में जो हंता मिर्गा है शीश निवाया क्या थिए जान देख सुदे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पुज स्वगल समादन मुख झूठ विभुख जान ते पाल ते हाल विचारन गल माल तिलक ललाटन दो तोती बस कपाटन जे जान सुबरमंग करमंग सब फोक्त निश्चो करमंग।

0: पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबर तरण ना जाए धोती टिका ते जप माली धान मले छा खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाए छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए तरंदा महला पहला
1: मार्स खाने करे निवाज छुरी बगाए तिन गलता तिन